माया जिन उपाई कर कर देखै कीता अपना ज्यों तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई करसी फिर हुक्म न करना जाई सो पात साहो साहा पात साहेब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखै सब कोए केवड वड्डा डीठा होए कीमत पाए ना कहया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए।

मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाऊ। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास। हर हर नाम मिलै त्रिपतासा है, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम ना पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित वह उदम। जा आहर हर जियो परया, सैल पत्थर में जंतु उपाए। ताका रिजक आगे कर तरया, मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाऊ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोय न किस की तरया। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन पाओ करया। उडे उड आवे सै कोसा, तिस पाछे बचरे शरिया। तिन कवन खलावे कवन चुगावे, मन मह सिमरन करया। सब निधान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल तरया। जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत न पारा वरिया। राग आसा महला चौथा, सो पुरख एको ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगम अगम अपारा। सब त्यावह सब त्यावह तुद जी, हर सच्चे सिरजनहारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा। हर त्यावह संतोह जी, सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर

जो सेवह तुध जी जन नानक तिन कुर्बाना। हर त्यावह हर त्यावह तुध जी से जन जुग मैं सुख वासी। से मुकत भये जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी। जिन निरभउ जिन हर निरभउ।

हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता। तेरी अनेक करै हर पूजा जी, तप तप है जप है बेअंता। तेरे अनेक पढ़ै बहु सिमरत शास्त्र जी, कर किरिया खट कर्म करंता। से भगत पहले जन नानक जी, जो पावै मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जे

वरत जी, तू आपे कर है सो होई, तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा, तू करता सचियार मेंढा साई, जो तौ पावै सोई थीसी, जो तू देहे सोई हों पाई, रहाओ

जन जाणै हर गुण सद ही आख वखाणै जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया।

जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला तित सर वरड़ै पहिले निवासा, पानी पावक तिन्हें किया पंकज मोह।

नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो सत्रन को पलमो बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर यस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जब उदकर्ख करा कर तारा प्रजा तरत तब देहे अपारा जब अकर्ख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देहे तार सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद।

का मूड उचारत पेता, जाको पेव ना पावत बेता। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड कश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तो है ते।

उपसरूपा रंक पयो राव कही पूपा अंडज जेरज सेतज किनी उत पूज खान बहुर रच दिनी कहूं फूल राजा हवे बैठा कहूं सिमट पयो शंकर इकैठा सगरी सृष्टि दिखाए।

सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरेया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विस

पावड़ी। तिथे तू समरथ जिथे कोई नाहे, उथे तेरी राख अग्नि उदर माहे। सुन कै जम के दूत नाए तेरा छड़ जाहे, पौ जल बिखम अस गाहो गुर शब्दी पार पाहे। जिनको लगी प्यास अमृत से खाहे, कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे। सब सह

सत्संग जी बोलो जी वाहेगुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाहसी भगवती पाठी दसवीं प्रत्यम भगवती समर कहे गुरु नानक लई जाए फिरंकट गुरते अमरदास रामदास सेवा सहाय अर्जुन हर गोविंद सिमर श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याग के साथ दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कानो ने दयावता है सब ताई हुए सहाय दसवें पाठिया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब ताई हुए सहाय दसा पाचिया के पुत्र आत्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पाठदारदा ते अंतर के घर से बोलो जी वाहे गुरी महाराज आप जी दे पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्त हड्डियां जपियां टपियां जिन्हें नाम जपया वंड चकिया दे चलाई ते वाहे दे के डेढ़ किया देना प्यार सत्यार की कमाई दा ते अंतर की बोलो जी वाहे गुरु जिन्हां सिंघां सिंघणियां धर्म हे सी दिते बांध बांध कटवाए कोपरियां लाइया चरकनियां चढ़े आरे न चढ़ाए गए गुरुद्वारे सेवा से कुर्बानियां की धर्म नहीं आ रहा किस तरीके तेना भी कमाए जाते अंदर की बोलो जी वाहेगुरु पाई गुरुद्वार अंदाते अंदर की बोलो जी वाहेगुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे नाम चेताव है चित आवन का सद का धर्म सुख हो जहां जहां गुरु खालसाचार्य आए देख देख की फतेह वृद्ध की पैज पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोलबाले बोलो जी वाहेगुरु। सिखा सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान विशाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान क्योंकि चंडे बुंगे जुग जुग टल धर्म का जयकार बोलो जी वाहेगुरु। सिखा दा मन नीवा मत उची मत पद के राखे आप वाहेगुरु गुरु की गुरुआज पंथ सदा सहाय दता जी गुरुद्वारा ननकाना साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरुदहां जिन्हों तो आपके पंथ को छोड़िया गया दर्शन दाल से अठ मार दादा अपने खालसा जी ने बख्शो ये ओटिया की ओट गुरु ने आसरिया के आसरे गुरु धन धन गुरु ग्रंथ उतार दियो दुआ कर जोड़ करो अरदास तुझ भावे ताले रास हे गरीब महाराज जी आप जी ने चन कमला अरदास में आपने बख्शिश की गरीब महाराज आदि चाहना पितर गुरबाणी सुखमणी साहब के संबून पाठ दिता इस वे संध्या समा जान के आपके चरण सोरदार रह रात साध पाठ चल कृपा करो हुईया भुला चुका की माफी बख्शो पढ़ी बाणी सोध के सच कर प्रमात्म बाणी का भाव सारिया संगत हिरदा इंसान की कृपालता करो जी अगो तो शोध के पितर बाणी चाहनी मन बुद्धि बख्शिश करो गरीब महाराज इस खुशी में आप दिन बख्शिया दातों में पितर कराप शाह बेगा तैयार करके खादन दतार आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद सत्संग की रचना लायक होवे जो जी सके श्वास श्वास आप जी का पितर नाम जप बख्शिश करो दतार जी दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखों का प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्शिश करो जी गरीब महाराज आप जी बख्शिया दातों जो लगना तुट सवारिया प्रबंध कर दी सरदार आपके जाना सेवा कर रहे सारे प्यारिया सिंघा सिंघनिया तंदुरुस्ती बख्शो चाड़ी करा बख्शो अरे सदा ही इस तरह अपने चरण सेवा की भावना बखने की पालता करो तंत्र पिता जी हो आपके चरण करा दरदास में तार पिता जी हो 1984 के कलूकारी तार पिता जी हो जीवन वाद जो उस समय की धर्म सकार तार पिता जी हो तन धन गुरु रामदास के पातशाह जी के पित्र स्थान जीवन वाद श्री हरिमंदर साहब जी से जीवन वाद फौजा ने हमला किया उस वे गुरु के प्यारे ने सिंगा सिंगणी बच्चिया ने गिरवाज आप भी पुत्रता कैम रखने वास्ते याद आख्या करने वास्ते गिरवाज अपनी जाना कुरबान की कुरबानियां दीतियां सार पिता जी बख्शिश करो उन्होंने सारे शहीदों दत्मा उन्हें चरना आत्मक चोटा बख्शो अरे पिछले परिवारों को पाणा मन वास्ते चाहिए चलता करो परिवारों सुख रखो सुचे पातशाह जी इतार कृपा करो इन्हों महान शहीदों यादों मना दतार पिता जी खास से कौम गुरु अज दिया फौजियों सच्चे पातशाह जी नौजवान पीढ़ी उन्होंने तो सबक लेंदे हुए उन्होंने सारे यादव ताइया करके उन्होंने पाए पूरे चलन वास्ते उन्हें दर्शाए मार्ग अपनाने वास्ते भावना की दास उतारता करो भावना दास बखार कृपा करो हे गुरु गरीब नवाज अमृत वे तो लागे दाते आई साहब संगत हाजिर दर प्रवान करो घड़िया लिखे लाओ संगत दर से तिर बेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी धन धन गुरु तो दर पिता जी आप दर कर सेवादार स्वर्गवासी बीबी हरबंस कौर गरेवाल जी आत्मिक शांति वास्ते गुरुवाज अजय प्रवान लोग गुरु के लंगर वास्ते
ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ $1100 ਆਪਦੇ ਚਾਨਾ ਪਿੰਡ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਲਦੁਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਜ ਬਾਈ ਬਖਸ਼ੋ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਔਗਣ ਨਾ ਜਤਾਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਨਾ ਵੀ ਵਾਰ ਬਖਸ਼ੋ, ਠੰਡ ਬਖਸ਼ੋ, ਆਵਾਗੋ ਦੇ ਪਚਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਡਾਵਨ ਵਾਲ ਵਿਦਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਪਿਛੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁੱਖ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਲੰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਕਮਾਈਆਂ ਸਫਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਦਤਾਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਸਭਾਗ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਤ ਦਾਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਚਾਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੋ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਹਾਰ ਮੈਦਾਨ ਦੁਆਨ ਭਦਰ ਵਕਤ ਬਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਦੂਰ ਦੁਰਾਜ ਘਰ ਬੈਠੇ ਲਾਇਕ ਤੱਕ ਸ਼ਰਮ ਖਾਰੀਆਂ ਸਾਲ ਚੰਦੇ ਹਾਲ ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਘੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਓ। ਦਤਾਰ ਆਪਣੇ ਬਖਸ਼ੇ ਕੀ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਚਾਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਆਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਇਆ ਪੇਟਾ ਕੇ ਚਾਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਸਭ ਕਰੋ, ਕਾਰਜਵਾਜ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਆਓ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਪੁਰਨ ਕਮਾਈ ਬਖਸ਼ੋ, ਬਿਹਤਰ ਨਵੀਂ ਬਖਸ਼ਕਾਰ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤ ਬਾਰੇ ਰਮਤਾ ਵਾਸੀ ਆਗਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਰਹਿੰਦੇ ਘਰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਚਾਨਾ ਦਰਵਾਜ ਬਣਾਓ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚਾਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਾਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ।

अवसर संघ जी तेरे बेनती है कि एक तो लैके सत तक हर रोज सत्संग जी जो सिक्का नारा था जो सत्संग जी 1984 दे पहले का तीजा का लुकार होया जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने गुरु साहिबां दी इस आन शान नूं कायम रखने वास्ते चाह दित्तियां ने साका नीला तारा सो उन्हां सारिआं दी याद विच एक तो सत तक हर रोज कीर्तन दरबार उन्हां दी शान उन्हां दे शांति वास्ते उन्हां दे चाटिकरा वास्ते उन्हां दे इस कारण मैनूं उन्हां दे इस योग सिखों वास्ते कीता है धन्नवाद करते हैं उन्हां नाल यात्रा करनगे सत्संग जी अज है अटैक ऑन अकाल तख्त 1984 साका नीला तारा जिस हिंदुस्तानी जालम सरकार ने फौजा नूं चाढ़ के ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ 4 ਜੂਨ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਇਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੋਣਗੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚਿੰਦਾਈਆਂ ਭੇਟ ਕਰੀਏ ਸਾਓ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਕਰੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

सलोक दखणे महला पंजवा लगड़िया पिरियन पेखंदिया ना तिपिया हब मजाहू सो तनी ब्याह न डिठो कोई।

वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु जी। अरदास इको ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय वार। श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक नहीं ध्याए। फिर अंगद गुर तेम अरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे हैं कर नानित आवै ताए। सब थाई हुई सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुई सहाय। दसवां पातशाहियां दी जोत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी। हे निमाणियां दे माण नितानियां दी तान नियोटियां दी ओट सच्चे पिता धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ। आप जी का कोटान कोट धनवाद है पातशाह जी। आप जी ने अमृत वेले तो खुले दर्शन दीदारी बख्श के निहाल किया है जी। इस वेले दीवाना की संपूर्णता तो उपरंत आप जी के स्वरूप के सुख आसन की सेवा हुई है पातशाह जीओ। सोहेले साहब जी के पाठ होए हैं। बाणी पढ़द्या तो सेवा करद्या तो आप जी की हजूरी विच विचरद्या तो हुई गलतियां भुलों की मुआफी बख्शनी अगे वास्ते समत बख्शिश करनी बाणी का भाव दर आईया संगतों के हिरद्या से वसाउणा। दर आई संगत की हाजरी तिल फुल भेटा दर प्रवान करने अपने दरों घरों सिखी सिदक नाम भरोसे जात बख्शिश करनी पातशाह जीओ। चार पहर दिन आप जी के पाने में सुख न बतीत होया है। चार पहर रहन आप जी अपने पाने विच बतीत करवाना। इस वेले आप जी का सुख आसन तैयार है। आप अपने आसन से विराजमान होवो। सेवकां नूं संगतां नूं खुशियां बख्शो। अमृत वेले खुले दर्शन दीदारे बख्श के निहाल करना सही प्यारे मिलना जिन्हां मिले आप जी का नाम चेतावे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

सतगुरे नमः श्री गुरुदेवय नमः अष्टपदी सिमरों सिमर सिमर सुख पाव।

तीर्थ स्नानी प्रभ कै सिमरन दर गहमानी प्रभ कै सिमरन हुए सुफला प्रभ कै सिमरन सुफल फला सी सिमरै जिने आप सिमराई नानक ता कैला गोपाए प्रभ का सिमरन सब ते ऊचा प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै प्रभ कै सिमरन सब किछ सुझै प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिद माहि समाए प्रभ जी बसै साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभ को सिमरह से तनवंते प्रभ को सिमरह से पतवंते प्रभ को सिमरह से जन प्रवान प्रभ को सिमरह से पुरख प्रधान प्रभ को सिमरह से बे मोहताजे प्रभ को सिमरह से सर्व के राजे प्रभ को सिमरह से सुखवासी प्रभ को सिमरह सदा विनाशी सिमरन ते लागे जिने आप दयाला नानक जन की मंगै रवाला प्रभ को सिमरह से पर उपकारी प्रभ को सिमरह तिन सद बलिहारी प्रभ को सिमरह से मुख सुहावे प्रभ को सिमरह तिन सुख बिहावे प्रभ को सिमरह तिन आत्म जीता प्रभ को सिमरह तिन निर्मल रीता प्रभ को सिमरह तिन अनंत कनेरे प्रभ को सिमरह बसै हर नेरे संत कृपा ते अनदिन जाग नानक सिमरन पूरै भाग प्रभ कै सिमरन कार्य पूरे प्रभ कै सिमरन कबू न चूरे प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी प्रभ कै सिमरन सह समानी प्रभ कै सिमरन

अनुसार नहीं पाया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग भेद उपाए, हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौंकुंट जाते, हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन की सगल अकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा, कर कृपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमर।

तेरा को न सुजानू हर का नाम तह लाल पहचानू जय महाप्यान तप्त बहुकाम तै हर के नाम की तुम ऊपर छाम जा त्रिका मन तुझ आकर कह तह नानक हर हर अमृत बर कह भगत जना की बर्तन नाम संत जना कह मन विश्राम हर का नाम दास की ऊट हर कह नाम उदरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद।

ते तरे पार जात्यो हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लत्था नाम की महिमा संत रिद्वसै संत प्रताप दुर्त सब नसै संत का संग वड भागी पाई है संत की सेवा नाम ते आई है नाम तुल कछ अवर न होए नानक गुरमुख नाम पावै जन को इस लोक

ने हस्तपाव करनी तरसना तिसह त्याग वर संग रचना ऐसे दुख मुडंद व्यापे नानक काढ लिहु प्रव्यापे आदंत जो रख नहार तिस्यों प्रीत न करै गवार जाकी सेवा नव नित पावै तास्यो मूड़ा मन नहीं लावै जो ठाकुर सत सदा हजूरे ताकु वंदा जानत दूरे जाकी टहल पावै दर कह मान तिसे बिसारै मुग्ध अजान सदा सदा भूलन हार नानक रखन हार अपार त्या कौटी संग रचै सा छोट झूठ संग मचै जो छिडना सुअस्थिर कर मान।

सो दूर पर आने छोड़ जाए तिसका श्रम करे संग सहाय तिस पर हरे चंद्र लेप उतारे तो हे गर्द प्रीत पशु संग हुए अंधकूप में पतत विकराल नान काढ़ लिहु प्रभ दयाल करतूत पशु की मांस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर पेख अंतर मलमाया छिप सुनाए कछ करे छिपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापै लोभ स्वान अंतर अगन बाहर तन स्वाहा गल पात्र कैसे तरह था जाके अंतर बसै प्रव्याप नानक तेजन सह समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावै कर गहले ओढ़ निभावै कहा बुझारत बुझै डोरा निष्कहिय तो समझै पूरा कहा विष्ण पद गावै गुंग जितन करै ताओ भी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं हो तू हा उस गवन करतार करुणा मैं दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाय सुहावै न चीत जो बैराई ता सुप्रीत बलुआ के गृह पीतर बसै अनंद केल माया रंग रसै दृढ़ करमाने मने प्रतीत काल न आवै मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ त्रोह आहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लिहु अपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पहे अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम आस पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा में सुख कनेरे कोए न जाने तुमरा अंत उचे ते ऊचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी तुम ते हुए सुआग्याकारी तुमरी गत में तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी श्लोक तीन हार प्रभ छूट कै लाग आन सुवाए नानक कहू न सी जई बिन नावे पत जाए अष्टपति दस वस्तु ले पाछ पावे एक वस्त कारण विकोट गवावे एक पी न दे दस पीर ले तो मूड़ा कहु कह करे ये ठाकुर स्यो नाई चारा ताको की जय साध नमस्कारा जा कैमन लागा प्रमीठा सर्व सुख ताहु मन बूठा जिचने अपना हुक्म नाया सर्व थोग नानक तिन पाया अगंत सब अपनी देरास खात पीत बरतैन दोलास अपनी अमान कछ बहुर साहुले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवे बहुर उसका विश्वास न होवे जिसकी बस्ती से आज्ञा राखे प्रभु की आज्ञा मन है मत है उसते चौगन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल निक भांत माया के हेत सरपर होवत जान नीत बिर की छाया स्यो रंग लावै ओ बिन सह मन पछतावै जो दिसै सो चलन हार लपटरे उतै अंध अंधार बटाऊ स्यो जो लावै नेहि ताको हाथ न आवै केहि मन हर के नाम की प्रि सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या तन धन कुटुंब सुबाया मिथ्या होमै ममता माया मिथ्या राजुवन धन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती अशु वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या ध्रुमो अभिमान मिथ्या पशु प्रकृत गुमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जीव है हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनै मिथ्या हस्त पर गर्भ को हिरै मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार कौता वह मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या तन पर उपकारा मिथ्या बास लेत बिकारा बिन बुझे मिथ्या सब पय सफल दे नानक हर हर नाम ले बिरथी सागत की आरजा साच बिना कहूत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुखावता कह दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बृथा विहाय मेघ बिना ज्यो खेती जाए गोबिंद भजन बिन बृथे सब काम ज्यो कृपन के निरार्थ दाम धन धन ते जन जे घट बस्यो हर नाओ नानक ता कह बल बल जाओ रहत अवर कछ अवर कमावत मन ही प्रीत मुख हो गंडलावत जानन हार प्रभु परवीन बाहर भेख न काहू पीन अवर उपदेशय आप न करै आवत जावत जन्मै मरै जिसके अंतर बसै निरंकार तिसकी सीख तरै संसार जो तुम भाने तिन प्रभ जाता नान कुंजन चरण पराता करूं बेनती पार ब्रह्म सब जानै अपना किया या पहमानै आप है आप करत नबेरा किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा पाव सियान सगल ते रहत
ਸਭ ਕਛ ਜਾਣੇ ਆਤਮ ਕੀ ਰਹਿਤ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲੈ ਲੜ ਲਾਏ ਥਾਂਤ ਨੰਤਰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਜਪ ਨਾਨਕ ਹਰਿ।

गुरुदेव अष्टपदी जेह प्रसाद छत्ति अमृत खाए तिस ठाकुर को रखमन माई। जे प्रसाद सुगंधत तन लावह तिसको सिमरत परम गत पावह। जे प्रसाद वसै सुख मंदर तिसे त्याय सुदा मने अंदर। जे प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पहर सिमरह तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याय त्यावन जोग। जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावह तिसे त्या कतवर लुभावह। जे प्रसाद सुख से सोई जय मन आठ पहर ताका जस गावी जय। जे प्रसाद तिर सब को मान मुख ताकु जस रसन बकान। जे प्रसाद तिर रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जप दरगह मान पावह नानक पत सिद्धि घर जावह। जे प्रसाद आरु कंचन देही लिव लावो तिस राम सनेही। जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावह हर हर जस कहत। जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरणी पर ठाकुर प्रभ ताके। जे प्रसाद तुझको न पहुँचे मन सास सास सिमरो प्रभु उच्चे। जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक ताकी भगत करे। जे प्रसाद भूखन पहरी जय मन ति सिमरत क्यों आलस की जय। जे प्रसाद सुभ हस्त सुवारी मन तिस प्रभ कौ कबू न बिसारी। जे प्रसाद बाग मिलक तना राख पुरो प्रभ अपने मना। जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठ सत सहत्याई तिसहत्याय जो कल कही हाँ वहाँ नानक तेरी रख। जे प्रसाद करै पुन बोदान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान। जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ को साथ साथ चितारी। जे प्रसाद तेरे सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप। जे प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जे प्रसाद तेरी पत्र है गुरु प्रसाद नानक जस कह। जे प्रसाद सुने करण नाद जे प्रसाद पिक है बिस्माद। जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सह जे बसना। जे प्रसाद हस्त कर चल है जे प्रसाद संपूर्ण फल है। जे प्रसाद परम गत पावै जे प्रसाद सुख सह समावै सब प्रभु त्याग और कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो। जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल न मनो विसार। जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तुता कौ जाप। जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसै जान मन सदा हजूरे। जे प्रसाद तू पावै साच रे मन मेरे तूता स्योराज। ये प्रसाद सब की गत होई नानक जाप जपै जप सोई आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ। प्रभ कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभ सुप्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मातूतम होए। सर्व निदान प्रभ तेरी मया पू कछु न किन्हू लया जित जित लाओ तित लगै हर नाथ। नानक किन कै कछु न हाथ श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचर्ज कथा अष्टपदी। साध के संग मुकुजल होत साध संग मल सगली खोत। साध के संग मिटै अभिमान साध के संग प्रगटै सुज्ञान। साध के संग बुझै प्रभ नेरा साध संग सबूत नबेरा। साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा बरने कौन प्राणी नानक साध की शोभा ब्रह्मा ही सुमानी। साध के संग अगोचर मिले साध के संग सदा प्रफुल्ल। साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग हुए सब की रेन साध के संग मनोहर बैन। साध के संग न कतु तावै साध संग स्थित मन पावै। साध के संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन समीत साधु कै संग महापुनीत। साध संग किस स्यों नहीं बैर साध के संग ना बीघा पैर। साध के संग ना ही को मंदा साध संग जाने परमानंदा। साध के संग ना ही हो ताप साध के संग तजै सब आप। आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई। साध के संग न कबू तावै साध के संग सदा सुख पावै। साध संग बस्त गोचर लहै साधु कै संग अजर सह। साध के संग बसै थान उच्चै साधु कै संग महल पहुँचै। साध के संग दिड़ै सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म। साध के संग पाए नाम निदान
नानक साधु कह कुर्बान। साधक संग सब कुल उधारै, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारै। साधु कै संग सो धन पावै, जिस धन ते सब को वरसावै। साध संग धर्म राय कर सेवा, साधक संग सोभा सुर देवा। साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साधक संग सब थान गम, नानक साधक संग सफल जनम। साधक संग नहीं कछकाल, दर्शन भेटत होत निहाल। साधक संग कलुखत हरै, साधक संग नरक पर हरै। साधक संग यहाँ उहाँ सुहेला, साध संग विचरत हर मेला। जो इच्छै सोई फल पावै, साधक संग न बिरथा जावै। पार ब्रह्म साध रित बसै, नानक उदरै साध सुन रसै। साधक संग सुनो हर नाउ, साध संग हर के गुण गाऊ। साधक संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै। साधक संग लगै प्रमीठा, साधु कै संग घट घट डीठा।

नानक हुआ पर सगल निस्तार अष्टपदी मिथ्या ना ही रस न परस मन में प्रीत निरंजन दर्श पर त्रै रूप न पिख है नेत्र साध की टैल संग हेत कर न सुने काहू की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा गुर प्रसाद विख्या पर हर है मन की वासना मन ते टरै इंद्री जित पंच दोग ते रहत नानक कोट मध्य को ऐसा परस बैसन सो जी सुप्र सुप्रसन्न विष्ण की माया ते हुए भिन्न कर्म करत हो वह नहीं कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाचे केवल भगत कीर्तन संग्राचे मंत्र अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ अवरह नाम जपावे नानको वैष्णो परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मन ते बिनसै सगला भरम कर पूजय सगल पार ब्रह्म सा संग पापा मलख हुवै तिस भगवती की मत उत्तम हुवै भगवंत की टैल करै नितनीत मंत्र अर्पै विष्णु प्रीत हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै सो पंडित जो मन प्रबुदै राम नाम आत्म में शोधै राम नाम सार रस पीवै पंडित कै उपदेश जग जीवै हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जो नयावै बेज प्राण सिमरत बूझै मूल सूखम मैं जानै स्थूल चौवरना को देव उपदेश नानक उस पंडित को सदा देश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौवरना में जपै को नाम जो जो जपै तिसकी गत होए सासु पावै जन कोए कर कृपांतर उतारै पस प्रेत मुक्त पात्र को तारै सर्व रूप का उकद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहु जुगत गित न पाइये धर्म नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर करम जिसका मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास आत्म राम तिसने धरी आया दास दसंतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दर गह परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सूझी परे सगल संग आत्म दास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभ की आज्ञा तुम हितावै जीवन मुख सो कहावै तैसा हरक तैसा सोग सदानंद तै नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसी उसमाटी तैसा मृत तैसी बिखाटी तैसा मान तैसा विमान तैसा रंग तैसा राजान जो वरता ऐसाई जुगत नानको पुर कहिए जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाऊ जित जित कर रखे तैसा तिन आऊ आपे करन करावन जोग प्रभावै सोई पुन होग पसरे आप हो अंत तरंग लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता विनाश।

अष्टपदी कई कोट होए पूजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन प्रमेय उदासी कई कोट वेद के श्रोते कई कोट तुपिसर होते कई गोटा तुम ध्यान धार है कई कोट कबका विचार है कई कोट नवत नाम ध्याव है नान करते कंत न पाव है कई कोट पै अभिमानी कई कोट अंध ज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अभिगातम निकोर कई कोट पर दर्व को हिर है कई कोट पर दुख न कर है कई कोट माया श्रम माहि कई कोट प्रदेश पर माहि जि जिद लाभ तिथ लगना नान करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सुरभ उपाय कई कोट पात्र वृख ने बजाए कई कोट पवन पानी बैसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट सस्य सूर्य क्षेत्र कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र सगल समग्री अपने सूतार है नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है कई कोट राजस्थान सातक कई कोट वेद प्राण सिमरत अरसास्त कई कोट की रतन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिरजीवे कई कोट गिरिमे स्वर्ण थीवे कई कोट जग की नर पिशाच कई कोट भूत प्रे शुक्र मृगाच सब ते नीरे सबू ते दूर नानका पलिप्त रहा भारपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुर्ग निवासी कई कोट जन्म है जी वह मरह कई कोट बोझो नी फिर है कई कोट बैठत ही खाहे कई कोट काल है थक पाहे कई कोट गिये तनवंत कई कोट माया मैं चिंत जय जय पाणा तह तह राखे नानक सब किश प्रभु कह हाथे कई कोट भय वैरागी राम नाम संग तिन निवलागी कई कोट प्रभु को खोजंते आत्म है पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रप्यास तिन को मिलो प्रभु अविनाश कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको हो आप सुप्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन।

कई कोट की ने बात प्रगते हुए प्रमा समाता कंत न जाने कुए आपे आप नानक प्रभ सोए। कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवता तुम प्रगास कई कोट तत् के बेते सदा निहारे कु नेत्रे कई कोट नाम रस पीवे अमर भये साध साध ही जीवे कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस सुख सह समावे अपने जन को साथ साथ संभारे नानक होए परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभे कह दूसर नाही कोई नानक तिस बलिहार नै जल तल मही अल सोए अष्टपदी करण करावन करने जोग जो तिस भावै सोई हो किन मैं थाप थापन हार अंत नहीं किछ पारा वारा हुक्मे धार धर रहावै हुक्मे उपजै हुक्म समावै हुक्मे उच नीच व्यवहार हुक्मे निक रंग प्रकार कर कर देखै अपनी वडियाई नानक सब मैं रहा समाई प्रभावै मानुगत पावै प्रभावै ता पात्र त्रावै प्रभावै बिन शास्त्र राखै प्रभावै ता हर गुण भाखै प्रभावै ता पत तुधारै आप करै अपन विचारै दुहां श्रिया काप स्वामी खेलै विकसै अंतर जामी जो पावै स्वीकार करावै नानक दृष्टि अवर ना आवै कहो मानुक ते क्या होए आवै जो तिस भावै सोई करावै इसके हाथ होए तां सब किछ ले जो तिस भावै सोई करे अन जानत विख्या मैं रचै जे जानता अपना बचै भरमे भूला दह तिस धावै निमख माहे चार कुंट फिर आवै कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जन्ना मिले खिन मैं नीच कीट कौराज पार ब्रह्म गरीब नवाज जाका दृष्ट कछु न आवै तिस तत्काल दह तिस प्रगटावै जाकु अपनी करै बख्शीस ताका लिखा न गनै जगदीश जीव पिंड सब तिस की रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगाश।

वह बड़ राजा, कबहू भिखारी नीच का साजा। कबहू अपकीर्त मह आवै, कबहू भला भला कहावै। ज्यो प्रभ राखे तिव ही रहे, गुर प्रसाद नानक सच कहे। कबहू हुए पंडित करे बख्यान, कबहू मोन धारी लावै ध्यान। कबहू तट तीर्थ स्नान, कबहू सिद्ध साधिक मुख ज्ञान। कबहू कीट हस्त पतंग हुए जिया, निक जुन पर मैं परमिया। नाना रूप ज्यो स्वागी दिखावै, ज्यो प्रभावै तिवै नचावै। ज्यो तिस भावै सोई हुए, नानक दूजा वर न कोय। कब हूँ सा संगत उपावै, उस स्थान ते बहुर न आवै। अंतर हुए ज्ञान प्रगाश, उस स्थान का नहीं विनाश। मंत्र नामृत एक रंग, सदा बसै पार ब्रह्म कै संग। ज्यो जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग जो समाना।

नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतराज अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान जो जान मैं जो बनवंत सो होवत विष्टा का जंत आपस को करवंत कहावे जिन मरे भोजन प्रमावे तन भूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानक या मुक्त अगै सुख पावे धनवंता हुए कर गर्भावे तिन समान का संग न जावे बोल सकर्मा अनुकूपर करे आस पल भीतर काका हुए विनाश सब ते आप जाने बलवंत किन मैं हुए जाए पुष्मंत किसे न बदया अहंकारी धर्म राय तिस करे खुवारी गुरु प्रसाद जा का मिटे अभिमान सो जन नानक दरगह परवान कोट कर्म करे हो तारी श्रम पावे सगले बिरथारी इनक तपस्या करे अहंकार नर सुर फिर अवतार अनिक जतन कर आत्म नहीं द्रवे हर दरगह को कैसी गवे आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट न आवे सर्व की रेंजा का मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाना मुझते कछ होए तब इसको सुख नाही कोए जब जाने मैं

तब लग धर्म राय दे सजाए। प्रभ कृपा ते बंधन टूटै, गुर प्रसाद नानक हो छूटै। सहस खटे लखूट तावै, तृप्त न आवै माया पाछै पावै। इनक भोग बिकिया के करै, न तृप्तावै कप कमरै। बिना संतोख नहीं कूरा जय, सुपन मनोरथ बिरथे सबका जय। नाम रंग सर्व सुख हुए, बड़भागी किसे प्राप्त हुए। करण करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप। करण करावन करण हार, इसके हाथ कहा विचार। जैसी दृष्ट करे तैसा हुए, आपे आप आप प्रभ सोए। जो किच किनो सो अपने रंग, सब ते दूर सबु कै संग। बूझे देखे करै विवेक, अपै अनेक। मरै न बिन सह आवै न जाए, नानक सद ही रहा सुमाय। आप उपदेसै समझै आप, आपे रचिया सब कै साथ। आप किनू अपन विस्तार, सब कछ उसका करने हार। उसते पिन कहो किछ होए, तांत नंतरे कै सोए।

सच सच सच सब कीना कोट मधे किन बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप वा सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी श्रवण बख्याणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनी।

अष्टपदी। संत का दुखन आर जा कटै, संत का दुखन जमते नहीं छुटै, संत का दुखन सुख सब जाए, संत का दुख नरक में पाए, संत का दुखन मत हुए मलीन, संत का दुखन शोभा तेहीन, संत के हते को रखे न कोय, संत का दुखन थान भ्रष्ट हुए, संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक भीतर है, संत के दुखन ते मुख पवै, संतन कै दुखन काग जून लवै, संतन कै दुखन सर्प जून पाए, संत कै दुखन त्रिगत जून किरमाए, संतन कै दुखन तृष्णा में जलै, संत कै दुखन सब को चलै, संत कै दुखन ते सब जाए, संत कै दुखन नीच निचाए, संत दुखी का थाव को नाही, नानक संत पावै तां भीगत पाए, संत का निंदक मात ताई, संत का निंदक किन टिक न पाई, संत का निंदक महत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज तेहीन, संत का निंदक दुखियार दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत की निंदा दुख में दुख, नानक संत पावै ता उसका भी हुए मोख, संत का दुखी सदा पवित्र, संत का दुखी किसे का नहीं मित, संत के दुखी को डान ला गए, संत के दुखी को सब त्याग गए, संत का दुखी मां अहंकारी, संत का दुखी सदा बिकारी, संत का दुखी जन्म मरे, संत की दुख न सुख ते टरै, संत के दुखी को ना ही ठाऊ, नानक संत पावै ता ले मिलाए, संत का दुखी अध बीच ते टूटै, संत का दुखी किते काज न पहुंचै, संत के दुखी को ध्यान परमाइए, संत का दुखी उजड़ पाइए, संत का दुखी अंतर ते थोता, ज्यों सास बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किछ नाहि, अपन बीजा पे ही काहि, संत के दुखी कवर न राखन हार, नानक संत पावै ता ले उभार, संत का दुखियों बिल लाए, ज्यों जल बिहुन मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजै, ज्यों पाव किंदन नहीं त्रापै, संत का दुखी छुटै केला, ज्यों बुआड़ तिलकित महिं दुहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सदमिथिया कहत, किरत निंदक का तुर ही पया, नानक ज्योतिष पावै सोई थया, संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दर्घ है मिलै सजाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी न मरै न जीवाई है, संत के दुखी की पुजै न आसा, संत का दुखी उठ चलै निराशा, संत के दुख न त्रिष्ट है कोई, जैसा भाव है तैसा कोई होए, पया किरत न मिटै कोए, नानक जानै सच्चा सोए, सब घट तिसके ओ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तत करो दिन रात, सहते आवो सास विरास, सब कछ वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया, अपना केला करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जिसनु कृपा करे तिस आप नाम दे।

जाओ, मंथन अंतर ही सुआउ, नेत्र पेख दर्श सुख हुए, मन बिकसै साध चरण तुए, भगत जना कै मंथन रंग, बिरला को पावै संग, एक वस्त दी जय कर मया, गुर प्रसाद नाम जप लया, ताकि उपमा कही न जाए, नानक रहया सर्ब समाए। प्रभ बख्शंद दीन दयाल, भगत वच्छल सदा कृपाल, अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, सर्ब कटा करत प्रतपाल, आद गुर कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार, जो जो जपै सो होए पुनीत, भगत भाई लावै मन हीत, हम निर्गुण यार नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान, सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए, एक निमक हर के गुण गाए, अनिक राज भोग बढ़ियाई, हर के नाम की कथा मन पाई, भो भोजन कापर संगीत, रसना जपती हर हर नीत, भली सु करनी शोभा तनवंत, हृदय बसे पूर्ण गुरमंत, सा संग प्रभ

की जब अकार्यु कच न दृष्टिता। पाप उन तब कहते होता जब धारी अपन सुन समाद, तब वैर विरोध किस संकमात, जब इसका वर्ण चिह्न न जापत, तब हरख शोक।

केवल तनी तब बंद मुक्त कौ किस कौ गनी जब एक कहर अगम पारु तब नरक सुर कौ कौन अवतारु जब निर्गुण प्रभ सह सुभाई तब शिव सकत कहो कित ठाई जब आप है आप अपनी ज्योत रहे तब कवन निडारु कवन कत डरे अपन चलताप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख अपने आसन तय जन्म मरण कहो कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किसोए जब अविगत गोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त किच पूछत लेखा जब नाथ निरंजन गोचर गाते तब कौन चुटे कौन बंधन बाधे आपन आपापी चर्जा नानक आपन रूप आपी उपरजा जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तह चल छिद्र लगत कौकी जय जो स्वरूपी जो संग सुमावे तह किसह भूकवन तृप्तावे करण करावन करने हारु नानक करते काना ही सुमारु जब अपनी शोभापन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई जय सर्व कलाया पै परवीन तै बेद कतेब कहा कूचीन जब अपने आप आपुर धारै तो सगन आप सगन कहा विचार है जय अपन उचापन आप नेरा तै कौन ठाकुर कौन कही है चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप जय छल छेद भेद समाया ऊहा किसे व्यापत माया आपस को आप है आदेश त्यो गुण का नाही प्रवेश जय कै एक भगवंता तै कौन चित किस लागे चिंता जय अपन आप तियारा तै कौन कथे कौन सुनने हारा बहु बेअंत ऊच ते उच्चा नानक आपस को आप है पहुँचा जय आप रचियो प्रपंचकार त्यो गुण में किन्नो विस्तार पाप पुन तै पई कहावत को नरक को सुर्ग बंचावत आल जाल माया जंजाल हम मैं मुँह परम पै पार

दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की उपख्यान अपन के लाभ कर देखे खेल संकुचे तो नान के कह जय अभिगत भगत है आप जय पसरे पासार संत प्रताप दुह पाका आपे धनी उनकी शोभा नूं बनी आपह कौत कर आनंद चोज आपह रस भोगन निरजोग जिस भावे तिसे अपना लावै जिस भावे तिस खेल खिलावै बेसुमार अथाह गंते अतुलै ज्यों बुलावो।

अष्टपदी। आप कथै आप सुनने हारु, आप हैक आप विस्तार, जात सुभावै तं सृष्ट उपाई, आपने भाने ले समाई, तुम ते भिन्न नहीं किछ होए, आपन सूत सब जगत परोए।

को नाथ। जिस राखे तिस कोय न मारे, सो मुआ जिस मनो बिसारे। तिस तज अवर कहा को जाई, सब सिरेक निरंजन राई। जी की चुगत जाके सब हाथ,

पालो अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो व्याप प्रतपालै जीन बहु भात जो जो रचियो सो तिसै त्यात जिस भावै तिस लय मिलाए भगत करै हर के गुण।

दुर्लभ देहे तत्काल उदार। निर्मल शोभा अमृता की बानी, एक नाम मन माहि सुमानी। दुख रोग बिन से पह परम, साध नाम निर्मलता।

मणि सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

कथना कथि न आवै तोट, कथ कथ कथि कोटि कोट कोट। देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंत्र खाही खाहे। हुक्मे हुक्म चलाए राह, नानक विगसै वे प्रवाह। साचा साहिब साच नाए, पाखिया पाओ अपार। आख है मंगा है देह देह, दात करे दातार। फेर के अगै रखिए जित दिसै दरबार। मोहौ के बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार। अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार। करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार। नानक एवै जानिए सब आपे सचियार। थापिया न जाए कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए। जिन सेवया तिन पाया मान, नानक गाविए गुणी निधान। गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख कर लै जाए। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं, गुरमुख रहया समाई। गुर ईसर गुर गोरख बर्मा, गुर पार्वती माई। जे हों जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई। गुरा एक देहे बुझाई, सब ना जिया का एक दाता। सो मैं विसर न जाई, तीर्थ नावा जे तिस पावा। विण भाणे के नाए करी, जेती सिरठ उपाई। वेखा विण कर्मा के मिले लई, मत विच रतन जवाहर माणक। जे एक गुर की सिख सुनी, गुरा एक देह बुझाई। सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोए। चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जग ले, जे तिस नदर ना आवई तवात ना पुछै के। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे, नानक निर्गुण गुण करे। गुणवंतिया गुण दे, तेहा कोई न सुजई। जे तिस गुण कोई करे, सुनाए सिद्ध पीर सुरनाथ। सुनाए धरत तवल आकाश, सुनाए दीप लो पाताल। सुनाए पोहे न सकै काल, नानक भगता सदा विगास। सुनाए दुख पाप का नास, सुनाए ईसर बर्मा इंद। सुनाए मुख सालाहन मंद, सुनाए जोग जुगत तन भेद। सुनाए शास्त सिमरत वेद, नानक भगता सदा विगास। सुनाए दुख पाप का नाश, सुनाए सात संतोख ज्ञान। सुनाए अठसठ का इशनान। सुनाए पढ़ पढ़ पावै मान, सुनाए लागै सहज ध्यान। नानक भगतां सदा विगास, सुनाए दुख पाप का नास। सुनाए सारा गुणा के गाह, सुनाए सेख पीर पातशाह। सुनाए अंधे पावै राह, सुनाए हाथ होवै असगाह। नानक भगतां सदा विगास, सुनाए दुख पाप का नास। मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे पिछे पछताए। कागद कलम न लिखण हार, मन्ने का बह करन विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मान कोए। मन्ने सुरत होवे मान बुद्ध, मन्ने सगल भवन की सुध। मन्ने मोहे चोटा ना खाए, मन्ने जम कै साथ न जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पत स्यों प्रगट जाए। मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म से ती संबंध। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने पावै मोख द्वार, मन्ने परवारै साधार। मन्ने तरै तारी गुर सेखो, मन्ने नानक पावै है ना पेखो। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए।
पंच परवान पंच प्रधान पंचे पाव है दरगा है मान पंच सो है दर राजान पंचा का गुर एक त्यान जे को कह कर विचार करते कह करण नाही सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझै होवै सचियार तबलै ऊपर केता पार धरती होर पर होर होर तिस ते पार तलै कवण जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया गुड़ी कलाम

वेण सतगुर मुकत न पाए, आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो। गावहो सची बाणी, बाणी ता गावहो गुरु केरी, बाणिया सिर बाणी, जिन कौ नदर कर्म होवे हृदय तिना समाणी। पीवो अमृत सदा रहो हर रंग, जपे हो सारंग पाणी, कहे नानक सदा गावहो एह सची बाणी। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजों होर कच्ची बाणी। कहंदे कच्चे सुन दे कच्चे, कच्ची आख वखाणी, हर हर नित करहे रसना, कहया कछु न जानी। चित जिन का हिर लिया माया, बोलन पै रवाणी, कहे नानक सतगुरु बाजों होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ, शब्द रतन जित मन लागा एहो आसमाओ। शब्द सेती मन मिलिया सच्चे लाया पाओ, आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए। कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ, सेव सकत आप उपाय कह करता आपे हुक्म वरताए। हुक्म वरताए आप वेख है गुरमुख किसे बुझाए, तोड़े बंधन होवे मुकत शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनो आप करे सो होवे एक सस्यों लिवलाए, कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए। सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे, ततै सार ना जानी, ततै सार ना जानी, गुरु बाजों ततै सार ना जानी। तिहि गुणी संसार भ्रम सता, सुत्या रहण विहाणी, गुर कृपा ते से जन जागे, जिना हर मन वसिया। बोलै अमृत बाणी, कहे नानक सो तत पाए, जिसनो अन दिन हर लिव लागै, जागत रहण विहाणी। माता के उदर में प्रतपाल करे, सो क्यों मनो विसारी है, मनो क्यों विसारी है, ए वड़दाता जे अग्न में आहार पहुंचावे। उसनो क्यों पोहे न सके, जिसनु अपने लिव लावे, अपने लिव आपे लाए, गुरमुख सदा संभाली है। कह नानक ए वड़दाता सो क्यों मनो विसारी है, जैसी अग्न उदर में तैसी बाहर माया, माया अग्न सब एको जे ही करता है खेल रचाया। जात इस पाणा ता जमया, परवार भला पाया, लिव छोड़ की लगी तृष्णा, माया अमर वरताया। ए माया जित हर विसरै, मोह पुजै पाओ दूजा लाया। कहे नानक गुर प्रसादी, जिना लेव लागी तिने विचे माया पाया। हर आप अमुलक है, मुल न पाया जाए, मुल न पाया जाए, किसे विटहों रहे लोक विल लाए। ऐसे

जगत देखाया, गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ, चलत नदरी आया, कहे नानक सृष्ट का मूल रचिया, जोत राखी ता तू जग मह आया, मन जाओ भया प्रभ आगम सुनया, हर मंगल गाओ सखी ग्रह

अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो, कहे नानक प्रभ आप मिलिया, करण कारण जोगो।

कहे नानक ए नेत्र अंध से सतगुर मिले देव दृष्ट होए ए सर्वण हो मेरे हो सचै सुनणै नो पठाए सचै सुनणै नो पठाए शरीर लाए सुनो सत बाणी जित सुनी मन तन हरिया हो रसना रस समाणी सच अलख वेडाणी ताकि गत कही न जाए कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो सचै सुनणै नो पठाए हर जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया वजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए पावनी इक ना दसवां द्वार दिखाया तह अनेक रूप नाउ नवनिद तिसदा अंत न जाई पाया कहे नानक हर प्यारै जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया।

गुरमुख जिना बुझावहि। एहो सच सबना का खसम है, जिस बख्शे सो जन पावहि। कहे नानक सच सोहेला, सच्चे कर गावहि। आनंद सुनो।

तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास ताको बिघन न को लागे जाती प्रभ अगे अरदास। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नाओ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे है घर नौ निद आवे ताए सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु

सच्चे तो दाखे लग करोड़, सच्चे सब तान सच्चे सब जोर, सच्ची तेरी सिर्फ सच्ची सलाह, सच्ची तेरी कुदर सच्चे पातशाह, नानक सच त्यान सच जो मर जमे सो कच निकच महला।

0: चक्की चक थल वारो ले बहुत अनंत लाटू मधानिया अनगा अनगा पंखी पौंदिया लैना सा सूए चढ़ पवै जंत नानक पौंदिया गणित ना अंत
1: बंधन बंद पवाए।

नचे सब कोई, नच नच हसे चलने से रोए, उड़ना जाए सिद्ध न होए, नचन कुदन मन का चाओ, नानक जिन मन पाओ, तिन मन पाओ, पौड़ी न तरन कर गए।

निरंदर होवे चुप पी कर जाए परवाह नहीं किसे केरी बाज सच्ची लाए। दरबाटी ऊपर खर्च मंगा

0: एहो धन आखुट ना निखुटै ना जाए पूरै सतगुर दिया दिखाए। वाहिगुरु जी का खालसा
1: वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कारयोग सतसंग जी महाराज बख्शी की आप संगत ने बड़ी श्रद्धा भावना सहज पितर गुरबाणी आशा के वाले सपूर्ण कीते सरण कीते ने पर अज हुक्मनामे की कथा चार विद्वार में सरण की अरदास मारे बख्शे पृथक नामे सरण किए हैं। शास्त्री का जसवा समा गुरु साहब ने आप गुरु का बख्शे किया है। शास्त्री आप संगत पता है कि ना साल सौ साल जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन देख रहे हो चल रही है। सो बेअंत परिवार अपना दुशांत सफल करते हुए बेअंत माया गुरु घर में दिखती है। यह सफलता वास्ते सत्संग जी वटभाग्य हैं। बाकी जिन्हें जिन्हें माई पाई ने अभी अपना दुशांत सफल नहीं किया उन्होंने सारे बेनती है कि जरूर बनती माया जो तुम कर सकते हो जरूर दियो गुरु घर ताकि ये जी कंस्ट्रक्शन इसी अभी सारे मिलकर इस निशान शब्द संपूर्ण कर सकी। बाकी सत्संग तुम जड़ी बार पास हर अवसरम कर रहे हो तो आप सकता जिन्होंने घर ही आरंभ किए हैं पाठ कर रहे हैं भाग्य हैं इन्हें भोग पैणगे 21 जून में सवेरे 10 बजे मेन हाल में। सो जिन्हें जिन्हें माई भाई ने पाठ आप आरंभ किए हैं घर वो भाई रजिंद्र सिंह संपर्क करके अपना जो ना नंबर तुम उन्होंने दे सकते हो। उन्होंने नंबर है 4087124145। और सत्संग जी आप संगत बेनती है कि अज भाई साहब प्यारे मुकम सिंह जी का जन्मदिन है अभी सारे उन्होंने उन्होंने बख्शियां दाता प्रणाम करिए उन्होंने दसाए मार्ग में अपना वास्ते असं आप भी यत्न करिए। सत्संग जी आप संगत बेनती है कि कल है शहीदी संत बाबा जरनैल सिंह जी की जिन्होंने साढ़े सारे दुख ने अपनी चोड़ी पा के सिख कौम वास्ते खालसा पंथ वास्ते गुरु साहबां की पवित्रता वास्ते जो कुरबानी की है ना अपने सिंघां नूं लैके प्यारे सिंघां नाल कुरबानी की है असीं उन्होंने जरूर कल याद करिए और सत्संग जी वास्ते साजियां भर के उन्होंने जरूर प्रणाम करिए। सो सत्संग जी आप संगत ने बेनती है कि जो 8 नूं है गुरगद्दी श्री गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने आम शक्ति हाल के पाने गुरु जी खुशियां प्राप्त करनी है। भाई साहब तैयार ने शायद प्रणाम करने से करिए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
0: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संग जी आप जी वडभागी हो गुरु चरणा विच बैठ के हाजरियां भर के लाहे प्राप्त कर रहे हो। समा होया अमृत बाणी दे श्री सहज पाठ का प्यार सहित पावन अंग 334 तो अज आप अगली श्री सहज पाठ प्रारंभ करना है। सो प्यार सहित आप जी ने हाजरियां भरनिया हैं जो संगत घर विच बैठ के भी जुड़िया हुई हैं। आओ प्यार सहित गुरु चरणा नाल जुड़िए पावन अंग 334 तो अज के श्री सहज पाठ प्रारंभ हो रहे हैं जी।

जित घट नाम न उपजै, फूट मरै जन सोए, सावल सुंदर रामैया, मेरा मन लागा तू ही रहाओ।

मद रस लैत बिकारी उरी, कर्म भाग संतन संगानी, काष्ट लुह उधारी उरी। तावत जोन जन्म भ्रम थाकी, अब दुख कर हम हारी उरी। कह कबीर गुर मिलत महारस, प्रेम भक्त

या धन जोगन अर सुत दारा पेखन कौ जो दयो तिन ही माहे अटक जो उर्जे इंद्री प्रेर लयो औद अनल।

कौड़ी नौमी जौन छाड़ जो जग में आयु लागत पवन खसम बिसरायु जियरा हर के गुना गाऊ रहा गर्भ जोन मह उर्द तप करता तो जटर अग्न मह रहता।

जब लग जुगत न जानी है भाउ भगत भगवान संपै देख न हरखी है विपत देख न रोए।

अभिगत समझ आना, जत जत देखो बाहर न पेखो, संग माया लपटाना रहाओ। ज्ञानी ध्यानी बहु उपदेशी, एहो जग सगलो धंदा, कह कबीर एक राम नाम बिन, या जग माया अंधा। गौड़ी बारहवीं, मन रे छाडो भरम प्रगट

डग मग छाड़ रे मन बौरा, अब ताओ जरे मरे सिद्ध पाइए, लीनो हाथ संदौरा रहाओ। काम क्रोध माया के लीने, याबिद जगत बेगुता, कह कबीर राजा राम न छोड़ो, सगल ऊंच ते ऊंचा। गौरी तेरवी

उदार, जन कबीर कौ निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। राजा राम तू ऐसा निर्भउ, तरन तारन राम राया रहाउ, जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही, अब हम तुम एक भय हैं एक है, देखत मन पतियाही। जब बुद्ध होती तब बल कैसा, अब बुद्ध बल न खटाई, कह कबीर बुद्ध हर ले मेरी, बुद्ध बदली सिद्ध पाई। गौड़ी खट नेम कर कोठड़ी बांधी,

पाऊ। पंच पहरुआ दर में रहते तिनका नहीं पतियारा, चेत सुचेत चित हुए रहो तौल।

गम्मत गगन मंडल महत्या नाना बिखै रोग पै बंधन भागे मन निज घर सुख जा नाना मन निज घर सुख जा नाना ना एक सुमत रत जान मान प्रभ दूसर मन है न आना नाना एक सुमत रत जान मान प्रभ दूसर मन है ना आ नाना चंदन बास भय मन बासन त्याग कटे

कुसुम रस पावा, अकह कहा कह का समझावा, खखा इह खोड़ मन आवा, खोड़े चाड़ न दह दिसतावा, खसम है जान खिमा कर रहे, तो हुए निखगाओ, तो हुए निखगाओ अकह।

अगह गह गह गगन गहाई, कगा घट घट निम सह सोई, घट फूटे घट कबह न हुई, ता घट माहे घाट जो पावा, सो घट छाड़ अब घट कत धावा।

फिर डर लग गए, निडर हुआ डर उर हुए भागे, ढड्डा टिक ढूडह कतियाना, ढूडत ही टह भये ढूडत ही टह गए पराना, चढ़ सुमेर ढूड जब आवा, जिह गढ़ गढ़ो सु गढ़ मह पावा, नाना रण रूतो नर नेही करे, ना निवै ना फुन संचरै।

विचारा तौ भवजल तरत न लावै बारा सस्सा सो सहसेज सुवारै सोई सही संदेह निवारै अल्प सुख छाड़ परम सुख पावा तब एह त्रे ओह कंत कहावा हा हा होत हुए नहीं जाना जब ही हुए तब है मन माना है तो सही लखै जो कोई तब ओही ओह एहो न होई ल्यों ल्यों करत फिरै सब लोग ता कारण व्यापै बहु सोग लक्ष्मी बरस्यों जो ल्यो लावै सोग मिटै तब ही सुख पावै खखा खिरत खपत गए केते खिरत खपत अजहू नह चेते अब जग जान जो मना रहे अब जग जान जो मना रहे जह का बिछुरा तह थिर लह बावन अखर जोरे आन सकिया न अखर एक पछान सत का शब्द कबीरा कह पंडित हुए सो अन पह रह पंडित लोग कौ व्यवहार

चरण कमल गोबिंद रंग लागा, संत प्रसाद भय मन निर्मल, हर कीर्तन मह अन दिन जागा रहाउ। परवा प्रीतम करो विचार, घट मैं खिलै अघट अपार, काल कल्पना कदे न खाए, आदि पुरख मह रह सुमाए, द्वितीया दह कर जाने अंग, माया ब्रह्म रमै सब संग, ना उह बड़ै न घटता जाए, अकुल निरंजन एक पाए, तृतीया तीने सम कर लियावै, आनद मूल परम पद पावै, साध संगत उपजै विश्वास, बाहर भीतर सदा प्रगास, चौथे चंचल मन कौ गहो, काम क्रोध संकबहु न बहो,

कोय, जरा मरण दुख फेर न होय। छट खट चक्कर छहू दिसताए, बिन परचय नहीं थिरा रहाए। दुबदा मेट खिमा गह रहो, कर्म धर्म की सूल न सहो। सातें सत कर बाचा जान, आत्म राम लिहु परवान। छूटे संसार मिट जाहि दुख, सुन सरोवर पावो सुख। अष्टमी अष्ट धात की काया, ताम है अकुल महानिद्राया। गुर गम ज्ञान बतावे भेद, उल्टा रहे अपंग अछेद। नवमी नवे द्वार कौ साध, बहती मनसा राखो बांध। लोभ मोह सब विसर जाहु, जुग जुग जीवहु अमर फल पाखाहु। दसवीं दह दिस होए आनंद, छूटे भरम मिले गोबिंद। ज्योत स्वरूपी तत् अनूप, अमल ना मल ना छाह नहीं धूप। एकादशी एक दिस तावै, तौ जोनी संकट बहुर न आवै। शीतल निर्मल भया शरीर, दूर

उस सेवक को कोई भी दुख पौंदा नहीं जिस सेवक के सिर पर सतगुरु का हाथ होता है। सतगुरु जी बाणी च फरमान करते हैं, सब सह ऊपर नजर प्रभ तेरी, किसे है थोरी किसे है कनेरी। निगाह सतगुरु की सब के ऊपर है, कृपा बरस रही है, पर किसी ते थोड़ी है पर किसी ते बहुत है। जिदे ते बहुत है, जिदे ते सतगुरु की प्रसन्नता है, सतगुरु जी तुट के उसनों सतसंगत की दात देंदे ने, नाम की दात देंदे ने, अपना बना लेंदे ने। उस सेवक दे सतगुरु जी सारे कार्ज रास करदे ने। यही नहीं कि लोग सुखिए पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। उस अपने सेवक दे इलोक ते परलोक दोनों ही सहेले कर देंदे ने, किदे जिदे ते सतगुर दी नजर करेरी है। जो सेवक सतगुरु नूं समर्पित हो जाता है, जो सतगुरु के वचना ते सेवक चलता है, गुरु उस दे उपर कृपा करता है। गुरु प्यारे, मैं एक गल जरूर कह दिया, हर एक इंसान की कोई ना कोई भटकना है। कोई किते भटक रहा है, कोई किते भटक रहा है, कोई किसी नूं रब मानी बैठा है, कोई किसी नूं रब मानी बैठा है। जिन्ना चिर इंसान ये ओट आसरे बारले तकदा है, उन्ना चिर ये इंसान ये जीव धक्के खांदा है। किदां धक्के खांदा है? फिर एक जोन विच नहीं जांदा, अनंत जोना भोगदा है। पातशाह जी बाणी विच सानू फरमान करदे ने कि देखो, ईमान सुजन्म दुर्लभ है, होए ना बारे बार। ईमान सुजन्म दिता है, समझ दिती है, ज्ञान इंद्रियां दित्तियां ने, नेत्र दिते ने, कन्न दिते ने। पर गुरु प्यारे, मैं आप जी ने एक गल होर भी नाल दस दिया, तुसी कदी विचार करना, कले बैठ के देवते ने हाले मुक्त नहीं होए। उन्हां दे कोल एक विकसित मन है, बहुत विकसित मन है, सातों भी कितने ज्यादा दीवा बलिया होया है। पर लेकिन मुक्त होने वास्ते इस देही को सिमरे देव, सो देही भज हर की सेव। वो देवते भी इस देही नूं सिमरदे ने, उसनूं कहिंदे ने, हे अकाल पुरख साडे ते कृपा कर, सानू भी मानस जन्म बख्श, ताकि असी रहिंदा पेंडा जिहड़ा है वो भगती करके तेरी असी तय कर सकीए, तेरे विच लीन हो सकीए। हुण देवतियां कोल विकसित मन है, पर मुक्त होण वास्ते तन नहीं है। उहनां नूं भी एक बार फिर माता दे गर्भ तों जन्म लैणा पैंदा है। एक पशु है, उस पशु दे कोल विकसित तन है, बड़ा विशाल तन है, हाथी दे कोल बड़ा ताकतवर शरीर है, शेर दे कोल पर विकसित मन नहीं है उसके कोल। ए मन तन सतगुरु जी ने एक सिर्फ इंसान नूं बख्शा है। जिथे इसनों मन की दात दिती है, तन की दात दिती है, इथे इसनों सारी समझ भी दिती है। ता ही सतगुरु जी कहते हैं कि ऐ जीव, नहीं तो तू इस पौड़ी ते जो नर छुटके से आए जाए दुख पाएगा। जो ये पौड़ी तेरे हथों छुट गई ना, तो फिर तेरा आन जाण दा गेट बन जाएगा। फिर की होगा, केते रुख विरख हम चीने, केते पशु उपाए, केते नाग कुली मह आए, केते पंख उड़ाए। कई जूना तू दरख्तां दियां, जानवरां दियां, उड़न वाले पंछियों दियां, पशुओं दियां, सप्पां दियां भोग के आया है। कई जूना तू पत्थरां दियां भी भोग के आया है। केते रुख विरख हम चीने, केते पशु उपाए, केते नाग कुली मह आए, केते पंख उड़ाए। इस करके इनिया जोना भोगण तो बाद 84 लाख जोना भोगण तो बाद तेन ए पई प्राप्त, मानुख दिहोरिया गोविंद मिलन की एहो तेरे परिया। जिहड़ी तू आवागौन की भटकना शरीर विच रह के कर रहा ने, कदी किसी के दर ते कदी किसी के दर ते, तू उस परमेश्वर का हो जा। जे तू मेरा हो रहे सब जग तेरा हो। जदों तू परमेश्वर का बन जाएगा, स
ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਸ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਗੇੜ ਨਾ ਬਣੇ, ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਜੋਨਾਂ ਨਾ ਭੋਗਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ ਬਹੁਰ ਨਾ ਪਵਜਲ ਫੇਰਾ। ਸੋ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਤਰੁੱਟੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਤਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਥਾ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਕੋਲੋਂ ਕਥਾ ਸਰਵਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।